गोविंद नाम मत बीसर ए बैन उस गोविंद दा नाम ना विसरे क्योंकि जे नाम विसर गया ता फिर की हाल होवेगा जुड़ना विच भटकना पवेगा दुखी होवांगे इंसान इस दुनिया विच जन्म

अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, लक्ष्मी के है माया ने। जेड़ा इंसान सारी उम्र यही सोचता रवे कि वध तों वध पैसे कमा लो, भावे उहदे वास्ते पाप करने पै, भावे ठगी करनी पवे, भावे डाका मारना पवे, पर पैसे जरूर कठे करना। अंत वेला आंदा है, नाम नहीं जपया, मरण लगा है, ते तां भी चिंता करदा है कि दुनिया तू एवें तुर चले आ, मन मुताबक कमाया भी नहीं कमाई। अंत वेले माया वल ध्यान मौत हो गई, तां भगत जी बयान करदे ने उस इंसान नूं अगला जन्म कद

के मन मुताबक कमाया नहीं कमाई ता अगला जन्म ओनू सप दा मिलदा। आप नू पता है कि सप जड़ा है माया ते बहिंदा है। ओ इंसान सप दी जून धारण करके अपनी ए माया वाली तृष्णा

अंत काल जो लड़के सिमरे जिड़ा इंसान सारी उम्र तिया पुत्रा वाली ध्यान रखे नाम ना जपे अंत वेले भी ओदा ध्यान लड़किया वाल है नाम नहीं जपया नाम वाल ध्यान नहीं जे लड़के होए आग्या कारनी तां दुखी जे लड़का कोई नहीं होया तां दुखी ए नहीं कहंदा कि परमेश्वर जे तू दिता तेरी खुशी जे लड़का नहीं दिता तां भी तेरी खुशी उदा नाम नहीं जपया अंत वेले भी लड़के दा ध्यान मौत हो गई तां उन्हूं

कामना जपे मौत हो जाए तो ओदा अगला जन्म सुकर जोन अगला जन्म ओनू सूर दा मिल जाए। आपने देखा होगा कि सूर दे सत सत अठ अठ बच्चे होंगे ने। इस तरह वह इंसान सूर दी जुने पै के अपने बच्चों वाली तृष्णा पूरी करता है। भगत जी कहते हैं जिहड़ा अंत वेले लड़कियां वल ध्यान रखे अगले

कोई मकान भी ना बना सके, सिमरन नहीं कीता, मरन लगे हां भी सोने मकाना वाले ध्यान, इसे चिंता विच ही मर गए।

0: मैं कि मरे प्रेत जोन वाले वाले आसरे।
1: जिड़ा इंसान मकाना वाले ध्यान रखे अंत वेले मौत हो जाए प्रेत जोन ता अगला जन्म ओनू प्रेत दा मिलता है भूत प्रेत बनता है अते अपनी तृष्णा पूरी करता है। भगत जी कहंदे ने अंत वेले मंदिर

सतगुरु जी ने यह कहा कि दुनी चंद तेरा पिता जोना विच भटक रहा है, फिर तिना दिना दा भुख है, नाले ओ रोटी नहीं खांदा, ओ ता मास खांदा। तेरा पिता बगियाड़ दी जोन विच है। ए गल सुनी जिन्ने लोग बैठे सन सारिआं नूं रोटी खाणी भुल गई, सारिआं दी निगाह धन गुरु नानक साहब दे चेहरे ते गड्डी गई। दुनी चंद भी हैरान हो गया, हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह जे मेरा पिता मुक्ति नूं प्राप्त नहीं होया और बगियाड़ दी जून विच है, मैं कई सालां तों हजारां रुपए खर्च करके इस राज भंडारे करना हूं, ते कि मेरा ये दान पुन मेरा ये भंडारा करना सब व्यर्थ चला गया। साहब जी कहन लगे नहीं दुनी चंद, तेरे दान पुन दी सदका ही अकाल पुरख ने सानू तेरे कोल भेजिया, तेरे पिता नु मुक्त करन वास्ते। इस तरह कर, ये जिहड़ा प्रशादा तू साडे सामने रखे है इनू चुक लै। लाहौर दे दक्षण वाले पासे 3 मील दी विथ ते एक झाड़ी है, उस झाड़ी दे कोल तेरा पिता बगियाड़ दी जून विच तिन्ना दिना दा भुखा लम्मा पे है। डरी ना, कोल जाके आवाज मारी, वो सिर चुकेगा, मन तेनू बुला रहा होवेगा, ते ए प्रशादा ओदे अगे रख दे। दुनी चंद ने प्रशादा टकिया, उस प्रशादे ते तन गुरु नानक साहब की मेहर की निगाह पै चुकी सी। प्रशादा लैके दुनी चंद शहर के बाहर तुर पे है। भगत त्रिलोचन जी कहते ने, ऐ भाई जे जूना विच नहीं भटकना ते आ फिर परमेश्वर दा

पत्नी चंद वापस घर पहुंचे है। सारी कथा आके लोगों नूं धन गुरु नानक साहब नूं सुनाई। सारे लोग नमस्कार करन लग पए। हुण दुनी चंद ने हाथ जोड़े उपदेश मंगिया। कहन लगा पातशाह कृपा करो मैनू भी उपदेश दियो ताकि मेरा जन्म भी सौर सके। ता धन गुरु नानक साहब ने उस वक्त दुनी चंद दी प्रथाए फिर ए

समझदी मैं बड़ी सोहनी है, मैं बड़ी तेज भजनी है, मैनू कौन फड़ सकदा। इसे हंकार दे विच ही वो मौत नूं भुल जांदी।

सब जग बाधो काल को, सारा जग मौत दे वस है, सारिया नू मौत आनी है, पर कदू आनी किसे नू पता नहीं। मरना जरूर है, मौत तू कदी कोई बचिया नहीं, पर समझ नहीं आती इंसान फिर भी क्यों हंकार करता है। पता भी है मैं मर जाना, मेरे नाल कुछ नहीं जाना, पर इंसान फिर भी पाप करता है, फिर भी नाम नहीं जपदा, कहिंदा ए भी मेरा ए भी मेरा, पर कुछ भी इसका नहीं। प्यार ऐसा ही है, कहिंदे सारे ने कि मेरा बड़ा प्यार है, पर तन गुरु नानक साहब कहिंदे ने को मरे ना मोया नाले। जिहड़ा इंसान मर जांदा ओहदे नाल मरदा कोई नहीं। एक औरत आदमी दा पुत्र मर गया, बड़े रो, मां भी कवे बेटा तू ना मरदा मैं मर जांदी, पिता भी कवे तू क्यों मर गया तेरी जगह मैं मर जांदा, मेरी उम्र तेनू लग जांदी। इन्हां दोनां दा ए रोना देख के कोई मां पुरुष उस पासे आ निकले।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नूं असीं जो खो चुके हां, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नूं एक यात्रा आखते हैं अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है? हाउ मैनी? इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल है,

मेरी सेजड़िए आडंबर बने अवनाशी वर सुनिया प्रभ आवत सुनिया मेरी सेज सोही देख मोही गुरु के सिख दा हिरदा हिरदे दी सेजा हिरदे दा मंदर उदों जगमगाउंदा है उदों शोभनीक हुंदा है जदों साहिब प्यारा इहदे हिरदे दी सेजा दे उत्ते बैठा इस नूं आप प्रतख दीदार दिंदा है जदों वसदा हिरदे दी सेजा दे उत्ते ते फिर गुरु के सिख दे रोम रोम विचों शुकराना निकलदा है।

पहला नियम है गुरसिख दा कि गुरु की संगत करनी, सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके। जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आने वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करता, प्रात काल सतसंग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा है, गरीब नवाज कहंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नवाज।

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर दे ना। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा, ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची।

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उसनू मां भैन दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नू मां भैन ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है उह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको

अकाल पुरख महाराज दे दिते होए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे, जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूब हू उसे तरह लिखे जान, बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वादू चंगी गल है, क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नू सचे पातशाह ने आउन वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा।

शस्त्रहीन ए कबू न होई रहतवान गुर का सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेड़े पांच ककार दिते ने ना खालसे नूं पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है वी जदों ऑफिस विच जावे, जदों काम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ जित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नवाज कहंदे मैं इह बर्दाश्त नहीं करांगा वी मेरा गुरसिख पंजां ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे भी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन ए कबू न

नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इसकी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशा खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदिक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे, ओ जवान गिणिया जाएगा, ओही

गुरु के सिखां कोल धन अपार है ते फिर जिस कोल धन हुंदा है उसकी कीर्ति हुंदी है जस हुंदा है। कीर्ति नूं सुन के गुरु का सिख अहंकार विच ना आवे। सुख गुरु ने दिता है सुख नूं वेख के फुलिया ना फिरे औगण ना करन लग जे। धन कीर्त सुख राज बढ़ाई युवती जित सुत विद्या बहु पाई। दूजी है विद्या, विद्या पढ़ के विचारवान वड्डा हो जांदा है। किसे अहुदे ते पहुंच के गुरु ना भुल जावे, किसे अहुदे ते चंगे ते पहुंच के गुरु की सिखी ना भुल जावे। युवती सुत विद्या वो भाई ए सब दात गुरु की जाने। ए सारियां दियां सारियां गुरु कीयां दातां जाने। दातां जान के मन अंदर रंचक मात्र भी अभिमान ना आवे, ना अभिमान करे ना अहंकार करे। गरीब नवाज साहब।

नंद लाल जी मैं वचन कह ना गुरसिखा नू यह गल नहीं भी केवल गुरसिखा वास्ते ही ने भाई जेडे गुरसिखा ने अमृत छकिया मैं इन्हां नू वाक दिते ने मता तुहाडे मन अंदर कोई ख्याल आ जे भी साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इतनी करण मर्यादा दिती है सख्त मर्यादा दिती है इस करके मैं आप जी नू अपना भी एक वचन दसना जो मेरे पूरे पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा, गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे, पवित्र होवे, ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन, रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सुख कबू ना लहै। कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत, पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज ओनू कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो ओनू छेक दिता जावे जिहड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख, इसने ए रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया, भाई देसा जी ने लिखिया, बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दिते हुए इस रहतनामे दे। ये गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी दे वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज फरमान

जो प्रभु की अत प्यारी, धन गुरु नानक देव जीओ महाराज। गुरु नानक पद पंकज बंदन, गुरु नानक पद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख नकंदन, अमरदास गुरु।

तेग बहादुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह वसाला तरों तरा तरपन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जा मैं अमृत नाम है ज्ञान भक्त वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग गुर के शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी।

0: साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता वख्यान। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही पूर। साध की शोभा का नहीं आन, साध की शोभा सदा। सतगुरु जुगो जुग अटल चव तख्त मालक, नशा पास श्रीनी जगदी ज्योत। शब्द अवतार साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पवित्र गोद विच, ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तपस्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करन दे लई, अपनी हाजरियां लगवाउन दे लई, सत्संग हरी रस कीर्तन दा लाभ उठाउन दे लई आए हो, वडभागे हो। जो अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां गुरु चरणां विच ला के सपनियां बना रहे हो, सचमुच इन्हां घड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी बाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा 400 साल प्रकाश दे संगतां मना रहियां हन। साहबजादे बाबा जीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जी 300 साल दिहाड़े संगतां मना रहियां हन। ये कितने दिहाड़े कट्ठे होए हैं। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नूं मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए हां, वडभागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है, वेदां तों वी वाहरी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: वेदां तों वी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे विच महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करदे हन, साध की महिमा वेद ना जानना। वेद भी उहनां दी महिमा नूं जाण नहीं सकदे। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, अगम गमता तो रहत, इतनी डूंगी है, इतनी अगाध है, जिवें समुंदर दा अंत नहीं आउंदा, इसे तरह महापुरशां दा भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहिगुरु परमेश्वर बे अंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग, विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हन, परंतु सात संगत उस दी कुदरत कायनात दा अंत नहीं किसे नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखदे हन, बेअंत बेअंत, जिस दी सिफती दा भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहगुरु परमेश्वर जो बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां, उस दे विच अभेद हो गईयां, जिवें इक बूंद पाणी दी समुंदर दे विच मिल गई, उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: जिवें बूंद पाणी दे विच मिल गई, जोत जोत दे विच मिल गई, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। इस तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरश साधु किसे भी सास पवित्र लफ्ज नाल उन्हां पवित्र आत्मा नूं संबोधन करिए, उन्हां दी महिमा बेअंत है, क्योंकि ओ बेअंत दे विच मिल गए, बेअंत दा रूप हो गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: परमेश्वर दा रूप हो गए, जमन मरण तो रहत हो गए। श्री सुखनी साहब दे अंदर ए दो अष्टपदियां, साध की महिमा वेद न जाने, ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सिवन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। इस सुखनी साहब दे अंदर गुरु महाराज जी ने साध संगत वर्णन कीता, बड़ी महिमा वर्णन कीती है। आओ ऐसे ही महापुरुषां दी पवित्र याद विच बैठे हां, जिन्हां ते ए लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम। वज वज के तिना हिस्सों के बोल के अपनी रसना पवित्र करया करो, अपनी हाजरी लगवाया करो।

0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मारता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करदे हन। असी लोग ए सारियां रूहां सारियां आत्मावां परमात्मा तो विछड़ियां होईयां हन। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लख जून दे विच भरम दे भटकदे फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतदे फिरदे हां। अनेकां तरां दे दुखां सुखां दे विच फसे हुए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जिहड़े परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए, वो सारे कर्मां बंधनां तो रहत हो गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उन्हां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन शिव

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हां नूं देवत्यां दे विच सर्वोत्तम मन्ने गए हन। जा रहे हैं किसे जंगल दे रस्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करते हैं, मत्था टेक रहे हैं, धूल चक चक के मत्थे नाल ला रहे हैं, धन धन कर रहे हैं, धरती ते नमस्कार करते हैं बारंबार, जिन्हां नूं लोग नमस्कार करते हैं। पार्वती पुछदी है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किसनू नमस्कार करदे हो, तुसी किसनू मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो? भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषा ने तपस्या कीती है। बोलो सतनाम श्री वाहे। धरती का कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती की यह समर्था है कि पवित्रता बख्श सकती है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषों का जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साढ़े लोगों वास्ते। भावें संसारक तौर ते महापुरुषां दे जीवन नूं कोई सास सोच दा कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असीं अपनी बोली दे विच ओ विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरुष जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह होनी जिन्हां ने सास संगत जिन्हां दे नाम तों सारे लोग जानते हैं, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान सात संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह सात संगत संत बाबा नंद सिंह तों उपरंत ते सात संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं सात संगत सुनाउंदे हुंदे हन पटियाले वाले। भाई वीर सिंह जी सात संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे ओ डेरे दे विच होके जांदे, मिलके जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी विरध अवस्था विच पहुंचे हुए सन, परंतु एक दिन उन्होंने यह कहना कीता कि भाई गुरमुख सिंह, अज साढ़े कोल टाइम नहीं है, अज असी जल्दी जाना है, साढ़े कोल बड़ा थोड़ा वक्त है, असी जल्दी जाना है, जल पानी छकन दा चाह पानी छकन दा सानू ना मजबूर ना करो, साढ़े कोल टाइम नहीं है, गड्डी दे विच बैठे बैठे ही बस जो कोई गलबात करनी है कर लो। ते गड्डी दे विच बैठे बैठे भाई वीर सिंह जी उन्होंने कहना कीता, भाई गुरमुख सिंह जी, साढ़े कोल टाइम तो नहीं है, परंतु असी चाहते हां कि असी बाबा हरदित सिंह उन्हां दे इस ते असी नमस्कार कर लिए, एक बारी गुरु साहब नूं मत्था टेक लिए। संत गुरमुख सिंह जी हाथ जोड़ के कहंदे ने, जिवें आप जी दी मर्जी होवे। भाई वीर सिंह जी गड्डी तों उतरे, महापुरुषां दे पवित्र स्थान ते नमस्कार करन लगे, मत्था टेकन लगे। असी लोग मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, भाई हुण मत्था टेकिया, सारिआं ने जल्दी नाल मत्था टेक के खड़े हो गए, ते बहुतिआं ने तां मत्था लाया भी नहीं, जे किसे ने लाया तां थोड़ा जिहा मत्था ला के बस चुक लिया। भाई वीर सिंह जी ने मस्तक लाया, मत्था लाया, सारे उठ के खड़े हो गए, परंतु भाई वीर सिंह उन्होंने मस्तक नहीं चुकया। 5 मिंट निकल गए, सारे देख रहे हैं, 10 मिंट निकल गए, 15 मिंट निकल गए, 20 मिंट निकल गए, 25 मिंट निकल गए। बोलो
1: सतनाम,
0: इतने मिनट नमस्कार, इन्नी लंबी नमस्कार, इतना वड्डा मत्था टेकना, नमस्कार करनी, ते साध संगत संत गुरमुख सिंह ने कहंदे, असीं सोचदे हां भई 25 मिनट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए, फिर कहंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह के भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी एक बारी होर मत्था टेक लिए। बोलो सतनाम, टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा एक बारी होर ना मत्था टेक लिए। कहंदे महाराज जी मैं आपकी मर्जी है टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे, इसे तरह 20-25 मिनट का फिर टाइम निकल गया। बोलो सतनाम, संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं किया, कदे सवाल नहीं किया, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच ख्याल आया है, मैं पूछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहिंदे पुछो, की पूछना चाहुंदे हो? महाराज नाले तां तुसीं कहिंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असीं बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन का भी टाइम नहीं, बैठन का टाइम नहीं, नाले तुसीं मत्था टेकदे नमस्कार करदे 25 मिनट मत्था टेकिया, 20 मिनट 25 मिनट नमस्कार कीती, दोबारा फिर 20-25 मिनट नमस्कार कीती, नाले कही जांदे हो साडे कोल टाइम नहीं है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर का भजन होया है, असी तो अपने आप नू नमस्कार करके मत्था टेक के चार्ज कर रहे सी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिमें बैटरी डाउन हो जाती है कम करदी करदी, फिर उस नू चार्ज करने की लोड़ पैंदी है। कहंदे ऐसे तरह असी तो मत्था टेक के असी अपने आप नू चार्ज कर रहे सी, अपनी उस शक्ति ग्रहण कर रहे सी। सो साध संग जिथे वाहिगुरू का भजन, वाहिगुरू का सिमन, किसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दे चरण पए होन, भगती कीती होवे, सो शिव जी भगवान कहंदे हे पार्वती इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने, असीं एवें नहीं कहंदे, इथे कोई मंदिर कोई होर धार्मिक स्थान है तां है नहीं, जिथे असीं मत्था टेकदे हो ए धूड़ चक के मत्थे नाल ला रहे हो। कहंदे इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने, किसी ने परमात्मा की याद विच लीन हो के ओदा भजन कीता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इसे करके गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे फिर पढ़ो,

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दा जीवन बड़ा अद्भुत है, सात संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हां दी शरण दे विच इतनी तपस्या कीती, इतनी भगती कीती जो अखरां द्वारा वर्णन नहीं कीती जा सकती। बोलो
1: सतनाम।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हां दे पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चां दे जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं ऐसी गुरमुख की कठाली विच ढा लिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुआं की संगत करने वाला सी। बोलो साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां दा सी। हुण सास सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्हां नाल बड़ा प्यार करदे सन। गुरु नानक साहब जाके साधुआं कोल बैठा करदे, भाई फकीरां कोल बैठदे। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुआं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते साध संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर साध सुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी कम काज करदा है उसके कन्न भर दते कि तू तां इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घरवाली तेरी कदे ख्याल रखिया? उह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकते, पिता जी ने ही शिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आना है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए? कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह? कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है, जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है? की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ? कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए? पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह। बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजा प्यारियां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनूं पंजा प्यारे ने नाम दी दात दित्ती है, ते नाले कहा जो तैनू इह गुरमंत्र दित्ता है, मूल मंत्र दित्ता है, नाम दित्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इहनूं भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डणा। इह नाम दी दात गुरु तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी साध संजों कच्चे कोठे दे विच बैठे 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन लत्तां भी साध संग कमजोर हो गईयां, तुरिया नहीं साध संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो सिमरन देव जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुण पिता जी सोचदे हन की करिए, बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती की महापुरशो कृपा करो इस बालक नू अपनी चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालक नू अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदीप सिंह जी कहंदे हन बालका ए तां बालकी है भाई, ए तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालक च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम। दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनूं तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तां वही अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम। ए बड़ियां सास लम्मियां विचारां हन। सास बाबा जस्सा सिंह दा ऐसा जीवन ते साध संगत क्यों भाई तैयार है? फिर ए लाइन बड़ी औखी है, ए फकीरी करनी बड़ी औखी है, भेस धारना सौखा है। हां महापुरशो बाबा जस्सा सिंह ने कहण कीता इस तो बिना कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म होवेगा मनोगे? हां मनांगे। महापुरशां ने कहना कीता भाई गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ए बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दसदी है

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज ना गली हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बाल क्या, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिने त्याग दतियां। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिने लाजां दा त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोकां ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इसनू घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उसनू भी कई लोग लानता पाउण लग गए घर वाले नू भी, दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्होंने कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: सो सास सिंह तैसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: मुर्दा होए मरीज ना गली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुर पीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: सास सिंह 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़ियां दे पौण ते सुट दिंदे सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहिंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सास संगत लेल दे विच सास संगत पा के गोले चलाउंदे, सास संगत बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सास संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सास संगत उफण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी कहड़े ਘਾੜਤ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਇਤਨਾ ਹੁਕਮ।
2: ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਰੀਦ ਗਲੀ ਹੋਵਣਾ ਨਹੀਂ।

के सबे घट राम बोले रब दे प्यारे जिना ने शब्द दी कमाई की थी ओ फिर जिधर वेखदे हन उना नू परमेश्वर दी जो

उच्चारण करो श्री वाहे, पर ऐसी दृष्टि कि वो जिधर वेखते हैं जरे जरे विच परमेश्वर का नाम नजर, परमेश्वर की जोत नजर आवे, ये शब्द की कमाई तो होती है। कबीर जी कहते हैं, अलो अलख न जाई लिखिया गुड़ गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी सर्ब नरंजन दीठा। जदों मैनू पूर्ण गुरु ने नाम रूपी गुड़ दे दिता ते उस नाम की कमाई की थी, ते फिर हुण कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा। एक वेरा दा जिक्र है भगत नामदेव जी नू, हंकारी पंडिया ने आख्या ऐ नामदेव तू बड़ा नास्तिक है, क्योंकि अगे ठाकरा नू इशनान कराउंदा सैं, फुला दी माला चढ़ाउंदा सैं, दुध दा भोग लवाउंदा सैं, हुण तू कुछ भी नहीं करदा, तू पूजा छड्ड ही दित्ती है। ता भगत नामदेव जी कहते हैं, भाई मैं ठाकरा नू इशनान करन दे लई, इशनान कराउन दे लई जदों नदी ते जल लैन गया ते की तक्या कि जल दे विच 42 लख जून है, ते 42 लख जून दे विच मेरा परमेश्वर मेरा भगवान मेरा ईश्वर इशनान कर रहा है, ते मैं वखरा कानू करावा। भाई साहब भगत नामदेव जी शब्द उचारदे हन के आमी ले कुंभ पराई ले उतक, ठाकुर को इशनान करो 42 लख जी जल में होते, बीठल पहला काहे करो। मैं जदों जल विच वेखिया कि परमेश्वर इशनान कर रहे हैं, तो फिर मैं वखरा कानू करावा, मैं उन्हें चोज वेख के विस्माद ही हो गया, आख्या जे इशनान नहीं कराउना सी तो फिर दुख दा भोग ही लवा लेने, क्योंकि कोई भी थां ऐसी नहीं, कुछ तो पूजा कर, पूजा तो बिना तो गल नहीं बननी। तो भगत नामदेव जी कहते हैं, जत्र जाऊं तत पीठल पहला महा आनंद करे सद केला, मैं जिधर वेखदा हां बीठल ही ईश्वर ही ईश्वर नजर आउंदा है, ते जिथे वेखदा ईश्वर अपने आनंद विच मगन होया होया, मैनू कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा। तां पंडिया ने आख्या कदी दुध दा ही भोग लवा लिया कर, तां भगत नामदेव

ते बाबा संगत विचों बिछड़ गया है। संगत अगे लंघ गई ते बाबा पिछे रह गया है। रस्ते दे विच खलोता है, पांड चुकी नहीं जांदी, तुरिया नहीं जांदा, ते ऐ मना हुण की करां। जंगल वियावान है, कौन मेरा समान चुकेगा, किमें मैं जावांगा। उच्ची देनी आवाज मारी, वे है कोई हो जाया जिड़ा मेरा भार चुक लवे, मैं मजदूरी दे देवांगा। जदों बाबे ने उच्ची आवाज मारी ना, बाबा की तक रहा है, ओ सामने झाड़ियां वलों एक नौजवान गोल पगड़ी लंबा चोला, ये नौजवान आया, बाबा किथे जाना है। भई मैं सतगुरां दे दर्शन करन चलिया ते संगत विचों बिछड़ गया, पार मेरे कोलों चुकिया नहीं जा, लिया बाबा तेरी पांड मैं चुक लैंदा। बाबे दी पांड सिर ते चुकी ते बाबे दा हाथ अपने मोढ़े ते रख लिया।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरा। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होंदा, मेरा काम इन्ना है। ओए भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण ता भी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदिया भी देर नहीं लगती, जांदिया भी देर नहीं लगती। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु का धन्यवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार में बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़ता है फिर थले डिग जाता है, ये वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़ता है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी ये वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसन लग पे। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखन लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़ता है डिग जाता है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? ये ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखन लगे, हसण वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा वड्डा राजा सी, इंद्र जिस दा नाम सी। इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है, ते मैं हसदा ता हां। ए भलिया, तेनू धन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भुलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्यवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है वह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नूं भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बंधिए जे रहना होए, बहुता कुछ उत्थे बनाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात माल रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिया, भई किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसी तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ।